0: ଭାବପ୍ରବଣତା ଲୋପ ପାଇଲେ ଜୀବନଟା ରସଶୂନ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों की साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक

0: लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi has distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु। इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईस को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
1: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP has secured 3 major posts in the Delhi University Students Union DUSU elections. ABVP's Yash Dabas won the post of president, while Riya Chavri secured victory for secretary and Lakshya Raj Singh for joint secretary. However, independent candidate Dipanshu Shokin emerged victorious for the position of vice president. Defence Minister Rajnath Singh and Home Minister Amit Shah have congratulated APVP for their success in the DUSU elections. Mr. Singh said this victory is a symbol of the unwavering faith of the youth in the nation first policy. In his message, Mr. Shah said that this victory reflects the unwavering trust of the youth in ABVP's ideology of nation first and its commitment to student welfare. BJP President Nitin Naveen said this victory reflects the youth's continued faith in positive and constructive student politics rooted in the spirit of nation first. He said it shows their strong resolve to contribute to the vision of a Viksit Bharat. The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will witness a major nationwide youth mobilization today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across 1,067 locations in the country. It added that this program will be organized across 471 district My Bharat offices along with 596 locations of partner organizations. The Samaroh will bring the campaign's message directly to young people through Nasha Mukt Pledge, signature campaign, thematic street plays, slogan writing and youth-led discussions. Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. In a statement, Petroleum and Natural Gas Ministry said that domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price RSP with applicable subsidy. This ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households.

0: रोजगार क्षम करबार लागि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनार दुई नंबर खेपे प्रशिक्षण ब्याच थी दक्षता तालीम दिजा देशर 14 राज्य केन्द्रशासित इलाकार 34,920 जन गाँ इलाकार जुआन पिलामन को तालीम देवार लागि निष्पत्ति हेछि। आइबा 1 तारीख नु आइबा बछर डिसेम्बर 31 तारीख तक तालीम कार्यक्रम जारी रहबा। इथि पहला खेपे ग्रामीण विकास मंत्रालय तरफ ओडिशा सहित 14 राज्य प्रस्तुति समीक्षा करा जाइछि। सरकारी स्तर भिन्न भिन्न प्रस्ताव मामला मानक तुर्ति जांच और सितार समाधान लगी राजस्व विपर्य विभाग तरफ सब जिलापाल कड़ा निर्देश दिया जाए। जिला स्तर बिना समीक्षा और अधा अधूरा तथ्य सहित प्रस्ताव पठाजा लगी काम थी डेरी होताके अटकबार लगी भिन्न भिन्न दिग्पर कड़ा नजर रखबार के जिलापाल अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉ अरविंद पाढ़ी निर्देश दीछन। इतार सहित सब् चिठी पत्र विभाग अफिशियाल इमेल जरिए पठाबार के भी निर्देश दीजिए। पुरी श्रीगुंडीचा मंदिर खूब जल्दी भक्त मानक लगी खोला जीवा। मंदिर भितर सौंदर्यकरण काम शेष होबार उतरु अक्टोबर मासर पहला हप्ताति श्रद्धालु मानक मंदिर दर्शन सुजोग मिलवा बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी कहिछन। परिचालना कमिटी निष्पत्तिर अनुसार श्रीगुंडीचा मंदिर न भक्त मानक प्रवेश लगी 10 टंका शुल्क धारिज करा जाइछि। आइबा 26 तारीख दिन श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक बसबा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2026-27 बछर लगी संबलपुर जिला नु आइबा 22-27 तारीख तक हेबारे अयोध्या वाराणसी तीर्थयात्रा लगी प्रस्तुति शेष खेपे पहुंचीचे। गलाकाल जिलापाल कार्यालय अतिरिक्त जिलापाल अध्यक्षता थी इबदे गोटे बैठक हो जाए। जत्रा थी भिन्न भिन्न जिला नु मोट 775 जन तीर्थयात्री और 25 जन सहयोगी भाग ने तीर्थयात्री सुविधा और सुरक्षा के नजर थी रखिकी सब् प्रकार आनुषंगिक व्यवस्था करा बैठक नु जना पड़ी। जापान रो नागोया ठने गलाकेल 20 नंबर एशियो क्रीड़ा उद्घाटित हो जाए। एवं 4 तारीख तक हेबारे थी प्रतियोगिता थी 45 देश और जगान आसी पखापाखि 11,000 एथलीट 43 खेल थी 469 पदक लगी प्रतिद्वंदिता करें। उद्घाटन समारोह थी ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर भारतीय दल प्रतिनिधित्व करते। उत्तर आंडामान सगर आउतार आखरपाखर इलाका न गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि इतार प्रभाव थी आइबा 6 तारीख तक 6 दिन तक राज्यर बड़भागी जिला न घड़घड़ी सहित हालकानु मध्यम धरणर वर्षा हो पारे बोली भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाक विज्ञान केन्द्र तरफ सूचना मिली। आइबा 24 घंटा भितर कोरापुट और मालकानगिरी जिलार गुटे की जुड़े जगान दुकागड्डी सांगे अति जबर वर्षा हो पारे बोली पानीपाक विज्ञान केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी कर। एचनिर आंचलिक खबर इन शेष होगा। आरवलर आंचलिक खबर शुनिपारे रात 7:02 थी जुहार।
1: के बाद प्रधानमंत्री रेडियो पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से करेंगे मन की बात। आकाशवाणी के सभी केंद्र इसे प्रसारित करेंगे।
2: मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है। आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। बोलता मैं हूं, लेकिन बात आपकी होती है।
3: याद रखिएगा रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: राजधान्यां सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु विशेष शिविराणि आयोजयिष्यति। प्रतिदिनस्य अभियानस्य उद्देश्यं नागरिक नूतन समावेशने निर्वाचक सूच्यां प्रस्तावित समावेशनस्य अथवा नाम विलोपनस्य आक्षेपैः निर्वाचक सूच्यां विवरणानां संशोधने च साहाय्यं कर्तुं भविष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी भवानीपाटणा आमर आजिर कार्यक्रमर सूचना सकाळ 7:25 शुणिबे छोट छोट पिलामानंक पई कार्यक्रम सरग फुल प्रायोजित कार्यक्रम उद्योग प्रोत्साहन शुणिबे सकाळ 8:30 रिले करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। सकाळ 8:35 शुणिबे संत कवि भीम भोईंक कृति उपरे आधारित विशेष कार्यक्रम स्तुति चिंतामणि। संगीत प्रभुदत्त प्रधान, प्रयोजना प्रदीप्त श्रीचंदन। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी भवानीपाटणा प्रचार करिबु सकाळ 9:00। पूर्वाह्न 10:10 शुणिबे स्थानीय खबर एवं सुमधुर गीतर कार्यक्रम खोला झरका। द्वितीय अधिवेशनरे दिन 12:30 सुगम संगीत रहिछि। कंठशिल्पी मैंने इंद्राणी मिश्र, सुहास भंती, रतिकांत शतपथी एवं सेवाराणी महापात्र। चासर कथा दिन 8:10, दिन 8:20 शुणिबे ओडिया आलबम्रु किछि गीत। हिंदी कथचित्रर गीत दिन 2:45। तृतीय अधिवेशनरे अपराह 5:00 प्रचार करिबो विशेष कार्यक्रम उदय भारत। जीववाणी अपराह 5:30। संध्या 6:00 प्रचार करिबु प्रायोजित कार्यक्रम उद्योग प्रोत्साहन आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। संध्या 6:30 आदिवासी गीत क्रमरे शुणिबे सौरा गीत, परिवेषण करिबे बैसार सबर एवं साथी। राति 7:25 जिला हालचाल शुणिबे भद्रक जिला संपर्करे आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। चासबास कार्यक्रम राति 7:30। राति 8:00 शुणिबे ए सप्ताहर चिठी पाइछु कार्यक्रम। हिंदी भक्ति गीत राति 8:15। राति 8:30 शुणिबे स्पोर्ट्स स्कैन स्पॉटलाइट। राति 9:15 रिले करिबो आकाशवाणी दिल्लीरो। राति 9:30 अखिल भारतीय नाटक कार्यक्रम रिले करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। राति 10:00 शुणिबे रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्लीरु। एथिला आमर आजिर कार्यक्रमर सूचना आकाशवाणी भवानीपाटणा। आमर परवर्ती कार्यक्रम सकाळर आंचलिक संवाद, आमर स्वास्थ्य एवं ओडियारे संवाद रिले करी प्रचार करुछु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।

0: 1, 2, 3, 4.
1: सुनो, चाय नहीं हो? अरे चाय नहीं हो माँ?
2: गला।
1: कौन है मिति गानी पकाऊँ चाचे?
2: अरे खबर कागज़ रो चारी पृष्ठा उल्टे लेनी, स्थानीय खबर कोटे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इतने कहीं की? आम रेडियो टा ऑन कलनी? मीडियम वेवरे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे, एफएम माध्यमरे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे, बा न्यूज़ ऑन एआईआर

0: हेलो
1: हेलो
0: किए
2: आपणक सह किछि मीठा मीठा कथा किछि अनुभव किछि अनुभूति रा कथा
3: आमा सह कथा हुंतु फोन माध्यम रे प्रत्येक गुरुवार दिन 11टा रु 11:30 मिनिट पर्यंत
2: आमा फोन नंबर हैला
4: 0667029562329568
3: मने रखंतु 0667029562329568 एवं यहाँ प्रसारण सुनंतु प्रत्येक रविवार दिन सकाळ 9:00 to 10:00 पर्यंत।
0: हेलो
1: हेलो
0: किए
2: हेलो आकाशवाणी भवानी पाटना।

0: ईस्ट तेलंगाना तमिलनाडु केरलम कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और अब समाचार विस्तार से सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
2: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
3: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग

0: और आम लोगों को दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
1: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और फूड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
0: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
2: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
0: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
5: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है, तो उसके सामने भी ग्राम लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में, लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी, क्योंकि वो हियरिंग होनी है, तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
3: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
6: We have to continuously be watchful of the...
7: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
3: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक केरला माहे तमिलनाडु तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र ओडिशा कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से

0: छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
1: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने ये चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक। राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिन्दुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है, राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी। ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो नानी, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो आकाशवाणी भवानी पटना को बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद नानी, लिप्सा नानी, नुआखाई जुहार।
0: नुआखाई जुहार, आउ थरे टिके परिचय दे दियोन।
1: मु रेडियो पार्टनर चित्रसेन सबर कोची कोलाहांडी जिला भवानी पटना जगन्नाथपुर।
0: मु तो जानि लिखली चित्रसेन भाई बोली, तथापि मते परिचय मागियो पड़ला।
1: हाँ नानी,
0: आउ केमती कोन चलछि आपनकर कारबार?
1: हाँ कारबार तो सब ठीक चलछि नानी।
0: आ दुकान ठीक ठाक चलछि?
1: नुआखाई गुटे सरी गला नानी।
0: जा हो।
1: हाँ नानी,
0: नुआखाई के तो डाकिलेनी।
1: हाँ नानी, आपन का नहीं डाके ना नानी, आपन तो दशमी खाबे कि नहीं
0: जानी छन।
1: आके लागे एबे आपन खाबे बोले तो आपन पूजा काम नहीं दे कि नहीं नानी।
0: आओ ताहले कौन भाई, आज केन गीत आपन सुनबा के पसंद करबे?
1: आज सुने देबे नानी, नील गगन के चले, ए गीत सुने देबे नानी।
0: निश्चय निश्चय। आके आके निश्चय भाई, इपन पसंद गीत आपन को भी निश्चय सुने देबो।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: आज्ञा नमस्कार।
0: आज्ञा नमस्कार।
1: हेलो
0: आज्ञा
1: को बहुत बहुत स्वागत। मु बहुत भल अछि, आपण केमती अछंती?
0: मु भी एकदम बढ़िया बिंदास हो जाय। मुई सुवल कुमार साहू कहतनी ग्राम पोस्ट पोंडी भाया विजयपुर जिला बरगर रो। आज्ञा
1: केमती अछंती भाई?
0: मु एकदम बढ़िया मस्त बिंदास हो जाय। आपण माने तो निश्चय भी भल दिबे।
1: आज्ञा आमे भी बहुत भल अछु। आउ नुआ खाइले?
0: हाँ आओ नुआखेर भी जुआर है। आज्ञा स्पेशल नुआखेर भी जुआर है।
1: नुआखाई जुहार।
0: हाँ जय माँ मानिस के सॉरी जय माँ समले
1: जय माँ मानिक
0: नुआखेटा बहुत बढ़िया से कर लिया। आपन को नुआखे तो नहीं थी बता लिया
1: अमर दशमी रे हबा।
0: हाँ आज्ञा आपन को भवानी पालना है तो माँ मानिकेश्वरी नो भोग लेकर दशमी नुआखे सोनेटा जयंती लेंगे।
1: आज्ञा आज्ञा जा हो कॉल करले बहुत खुशी लागला। तो मते कहो ना गो पहला आपन केन गीत सुनबा के पसंद करबे?
0: आज गीत रे सुनमा।

0: श्रोता बंधु एठे नै जिवा एको छोटो विज्ञापन बिरति
1: कोन आपण आईटीआई प्लस 2 डिप्लोमा किंबा बीटेक कंप्लीट करबा परे निजो करियर बूस्ट करबा को चाहौछंती
2: तेबे स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा द्वारा वर्ल्ड स्किल सेंटर रे 1 ईयर एडवांस स्किल डेवलपमेंट कोर्स रे भाग नियंतु जेउथिरे आपण को मिलिबो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग ग्लोबल एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज ओ 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस
1: बैच 10 सेप्टेंबर 26-27 एडमिशन आरंभ होई सारिछि आवेदनर शेष तारीख 30 सेप्टेंबर 2026
2: अधिक जानिबा पई विजिट करंतु www.worldskillcenter.org किंबा कॉल करंतु 1-800-266-002
3: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए
0: हेलो
5: मैडम नमस्कार
0: नमस्कार हेलो आकाशवाणी भवानी पटना को बहुत बहुत स्वागत
5: धन्यवाद मैडम सविता कौतुली जगतसिंहपुर
0: सविता मैडम बहुत दिन पर आपन को सहित कथा होची बहुत खुशी लागला जाने की आपन भलरे थिबे बोली आशा
5: आज्ञा
0: आ घरे समस्त केमती अछंती
5: मैडम मोला तो जो वायरल फीवर आस्तला चिंता समस्त रही चल गला पर तुमन का मस्त मन अछंती
0: जा हो खुशी लागला सुनि की वायरल तो समस्त को होची जेमती पागो होची ना सेथि भए सेमती होची मैडम
5: आज्ञा
0: तहले मत कहतु

0: हेलो
1: हेलो आकाशवाणी।
0: हेलो आज्ञा नमस्कार। हेलो आकाशवाणी भवानी पटना को बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार मैडम,
0: आपन को परिचय दियंतु।
1: मु साले होटल नु कहथिनी मैडम, कोलाहांडी जिला
0: नाटा
1: चक्रधर साहु मैडम। मु नियमित गुडे श्रोता मैडम, 2000 मसिया नु अच्छा मैडम।
0: आज्ञा आज्ञा चक्र भाई, मु बधे आपन को संगे प्रथम माने आज प्रथम थर पै कथा होची, सेति पै जानि पाइलिनी, बहुत खुशी लागले।
1: मु बहुत चेष्टा करसी मैडम, नहीं उमर फोन लेखा ने लाग मैडम।
0: हो केते केते बेले सेमती हुए भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम रो कथा त हमें कहि परबेनी हम हाथ नहीं, किंतु जा हो अपन को सहित कथा या मते बहुत खुशी लागला।
1: हां मैडम,
0: आ केमती अछंती
1: मैडम? मु तो अनेक थरो भी कथा हे छी मैडम, एले मु गुडे पूरा 100% विजुअल इंपेयर्ड मैडम।
0: हां हां, तो मते कोहन तो अपन केमती कोन अछंती?
1: मु भलो अछि मैडम।
0: तहले कोन करथली तहले? एबे
1: एबे किछि नै, खाली फोन लगावर लेखा व्यस्त थिनी मैडम।
0: जा हो हमको कॉल लगले, तहले मते कोहन तो को गीतटी सुनबे पे अपन पसंद करबे?
1: जी तुमरो से पंची स्वर में मैडम से गीतटा।
0: ओके ठीक अछि भाई, अपन को ई मनपसंद गीत अपन को भी निश्चय सुनै देबो।
1: ठीक अछि मैडम,
0: कॉल करले भाई बहुत खुशी लागला। कॉल करथिबार बहुत बहुत धन्यवाद, रहिलु, नमस्कार।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो आज्ञा नमस्कार। हेलो आकाशवाणी को बहुत बहुत स्वागत। आपण को परिचय दिन तो
1: जीवन नून कहू छी कल हंडी जिलर।
0: जीवन भाई केमती अछंती?
1: बहुत भलो छी। आपण भलो?
0: मु भी बहुत भलो अछि भाई। आ छुट्टी रे कोन घर को आछंती ना केमती?
1: ए छुट्टी रे जेने माने पछि क्लास चली छी। आपण को साइड वर्षा हो छी?
0: ना ना एपटे खरा हो छी भाई। आपण को पटे
1: किछ दिन खंडे होई छी वर्षा माने कमी जाई छी हे ने?
0: हां हां कमी जाई छी। हम पटे भी खरा हो छी भाई। आउ नुआ खाई सालिनि ना किमती?
1: मु तो गां को जाई ने
0: माने
1: पाठ पढु छी।
0: हां हां जा हो। आपण कॉल करले खुशी लागले छी भाई। मते कोहंतो को गीतटी आपण सुनिबा पाई आज पसंद करबे?
1: आपण मते दे देबे हिंदी रो कभी कभी चलचित्र र शीर्षक गीतटी दे देबे।
0: कभी कभी चलचित्र आपण को ए गीतटी हम निश्चय सुनि देबो।
1: निश्चय
0: आ क्या आपण को घरे समस्त भल अछंती?
1: समस्त बहुत भल अछंती।
0: हां हां भाई जा हो कॉल करले खुशी लागला। कॉल करथि पर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। नमस्कार।

0: सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABVP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के प्रति ABVP की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पत्रकार पायल मेहता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे जमीनी मुद्दों से गहराई से जुड़ी हुई थीं और राष्ट्रीय मुद्दों की व्यापक समझ के साथ रिपोर्टिंग करती थीं। श्री मोदी ने कहा कि पत्रकारिता के अलावा पायल मेहता लोगों के प्रति अपने स्नेह और आत्मीयता के लिए भी याद की जाएंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर समाज के सांस्कृतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। जापान में 20वें एशियाई खेल में आज भारत की टैगबॉल खिलाड़ी क्विम्सी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की उइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया के साथ खेलेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से होगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. More from our correspondent.
1: Biometric Aadhaar authentication ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It said 27.43 crore consumers have already completed authentication and do not need to do anything further. Authentication can be completed at the time of delivery, at the distributor's showroom, or an oil marketing company mobile app. With Suparna Saikia, Saklayan Akhtar for Akashvani News, Delhi.
2: Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain. Talking to a media house in New

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ କେତୋଟି ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଓ ପରେ ପରେ ଶୁଣିବେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ। ରିଲେ କରି
1: ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈ ମୁକେଶ କୁମାର। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन

0: चार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर पंजाब में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: पंजाब पुलिस ने इस सप्ताह सीमा पार से हेरोइन तस्करी के खिलाफ विभिन्न अभियानों में 101 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। ये कार्रवाई अमृतसर और फरीदकोट के सीमावर्ती जिलों में की गई। आज सुबह मुंबई के काला चौकी इलाके में गणेश उत्सव पंडाल के पास पीने के पानी के अस्थायी स्टॉल पर बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में 1 की हालत गंभीर है, जबकि 3 अन्य की हालत स्थिर है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मुंबई के ही कोस्टल रोड पर आज सुबह एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर प्रदान करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। बांग्लादेश के ढाका में आज कई देसी बम फटे। कल भी स्थानीय पुलिस स्थानीय के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में 1 रिक्शा चालक घायल हो गया है। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। इन घटनाओं के मद्देनजर ढाका पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है तथा पुलिस की गश्त और तेज कर दी गई है। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद व्यक्तिगत रजत पदक जीता। इससे पहले भारत की एलावेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीतकर देश को पहला पदक दिलाया। एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 12वें ओवर में 7 विकेट पर 58 रन बना लिए थे। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय तैराक ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल आज दोपहर खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड

0: operational synergy. The exercise also reaffirms the long-standing bonds of friendship and strategic cooperation between the two countries. Payal Sharma, Akashvani News, Delhi.
1: Tensions have escalated in West Asia after Yemen's Houthi fighters launched missile and drone attacks targeting Saudi Arabia. Saudi Arabia stated that it intercepted a ballistic missile launched towards Riyadh yesterday, while Yemen's Houthi movement has claimed attacks against Saudi targets. The U.S. State Department, citing Houthi hostilities against Saudi Arabia, renewed a blanket travel alert for Americans in or traveling to the West Asia region. Iran has said that the Strait of Hormuz will remain closed until the conditions are met and commitments from the United States are implemented. We have more from a correspondent.
2: Iranian officials have once again said that reopening the Strait of Hormuz depends on U.S. commitments, including an end to fighting and changes to sanctions and restrictions on Iranian shipping. The strait remains heavily disrupted, even as U.S. Central Command has claimed that it has helped more than 2,000 commercial vessels pass through the waterway in the past 2 months. The U.S. State Department, citing the Houthi hostilities with Saudi Arabia, has renewed its travel alert for the West Asia region. The U.S. has warned that the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Manish Shiva for Akashvani News from Dubai.
1: In Bangladesh, multiple crude bombs have exploded at a crossroads in Dhaka's Jatrabari area. One person has been injured in the incident. On the other hand, three buses were set on fire in separate incidents in Dhaka last evening. The incidents came a day after a series of crude bomb explosions were reported in several parts of the capital following Friday prayers. On to sports. In Asian Games 2026, India's campaign continues strongly on day two in Japan today. Indian shooters secured two silver medals in Nagoya today. India's Elavenil Valarivan clinched a silver medal in the women's 10-meter air rifle event at the Games. The 25 World Championship bronze medalist Elavenil shot 252.4 points in the final to finish behind Japan's Hinata Taichi, who won a gold with a record 253 points. Earlier, India has secured the silver medal in the women's 10-meter air rifle team event with Elavenil Valarivan, Sonam Muskar and Vidarsha Vinod combining to deliver the country's first medal of the Games. China took the gold medal. President Draupadi Murmu has congratulated the team on winning the medal. In a social media post, she said that this commendable achievement has opened India's medal account at the Games and brings immense pride to the nation. In women's cricket, India stormed into the finals at the Asian Games. India defeated Bangladesh by 114 runs in the second semi-finals in Japan today. Shefali Varma's maiden T20 international 100 in 49 balls paved way for India's convincing 114-run win. Vice-captain Smriti Mandhana scored 37 in 19 balls, while skipper Harmanpreet Kaur made 40 runs. With this, India is just one win away from the Asian Games 2026 gold medal. Meanwhile, opener Smriti Mandhana has become the leading run scorer in women's T20Is, surpassing New Zealand great Susie Bates' tally of 4,758 runs. Shefali Varma has also made history as she brings up her maiden white ball international 100 and becomes the first batter to score a century in the Asian Games. India will next face Sri Lanka in the gold medal clash on Tuesday. In mixed martial arts, India's Suchika Tarial today created history as she became the country's first athlete to secure an Asian Games bronze medal after reaching the women's traditional 60-kilogram semifinals at the Games. Suchika delivered a composed performance against Mongolia's Elten Chimeg Baigalma. With this win, Suchika advanced to the semifinal and confirmed India's first medal in martial arts. In hockey, the Indian women's team began the Games campaign with a dominant 19-0 win over Uzbekistan in the Pool B opener at the Gifu Prefectural Green Stadium today. Deepika Sherawat was the star of the match as she scored 8 goals. Ishika Chaudhary scored 3, while Lalthan Luangi and Neha each bagged 2. India will next take on Indonesia tomorrow. In swimming, Indian swimmer Rishabh Das has qualified for the final of the men's 100-meter breaststroke after finishing 5th overall in the heats with a time of 54.85 seconds at the Asian Games. China's Shi Ziyao topped the heats while Japan's Haide Kalu Takehira finished 2nd. Union Sports Minister Mansukh Mandavia today joins the Indian diaspora in Japan for a special Sundays on Cycle event organized to cheer for the Indian contingent. In a statement, Mr. Mandavia praised the Indian diaspora in Japan for supporting the country's athletes. The Indian Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil. in Telangana during the day. Madhya Maharashtra, Odisha, West Bengal, Jharkhand, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Marathwada, Telangana, Vidarbha are expected to experience thunderstorms accompanied. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. Rashtriya Sankalp Samaroh will be organized at various locations across the country to eradicate drug abuse among youth. Tensions escalate in West Asia's Houthis launch missile and drone attacks in Saudi Arabia. Indian shooters shine at Asian in Nagoya, Japan. India storms in the finals of Asian Games women's cricket after defeating Bangladesh in Nisin. India becomes first batter to score century. Smriti Mandhana becomes highest run scorer in the Women's T20 International. And IMD forecasts heavy rainfall of Andaman and Nicobar Islands, coastal Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Telangana today. And with that, we end the midday news.
0: दोनों वायु सेनाओं के बीच
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली समापन संकल्प समारोह का आयोजन हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम तमिलनाडु पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है एक रिपोर्ट
4: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों वैज्ञानिक जानकारी पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई इनमें नीतियां बनाने उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई अमन यादव आकाशवाणी समाचार दिल्ली
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे 14 राज्य इसमें भाग लेंगे जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं समारोह में नशा मुक्ति शपथ हस्ताक्षर अभियान नुक्कड़ नाटक नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा

0: कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
1: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की तीन प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
2: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपागोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
3: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
4: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य, यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं, तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो, उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन, चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी, उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं, उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
3: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
6: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों

0: का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
2: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायु सेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस परिचालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
3: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले दो महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए शिवा।
1: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई है। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3 जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा,

0: पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा, शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। शेफाली वर्मा, शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपण कार्यक्रम सुनिछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। आंचलिक संवाद सुनिपरिबे एई विज्ञापन परे।
2: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
3: गारु सहर जाय सबु स्थान रे
2: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाय सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନ 3 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 के सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधान प्रदर्शित किए जाएंगे। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उनकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमरीका अपनी प्रतिबद्धताएं लागू नहीं करता। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कलीबाफ ने यह टिप्पणी की है। एक रिपोर्ट।
3: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए मनीष।
1: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनिल वेलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। इससे पहले भारत की एला वेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सराहनीय उपलब्धि के साथ भारत का एशियाई खेलों में पदकों का खाता खुल गया है। देश को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड

0: अभी तक मैंने बहुत सारा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में काम किया, जैसे एंटी थेफ्ट चार्जर, वायरलेस स्विच कंट्रोल सिस्टम, परंपरा डोको, जीवन रक्षक खुकुरी, और बहुत सारा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। मैं मशीन्स वगैरह भी डिज़ाइन कर रहा हूँ, और उसमें मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह को भी लेकर मैं उस इनोवेशन को थोड़ा मार्केट में भी लाने के लिए प्लान में चल रहा हूँ मैं। और जो इको स्पून है, वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट का जर्नी मेरा कैसे स्टार्ट हुआ कि जैसे मैं लास्ट ईयर मैं उत्तराखंड घूमने के लिए जा रहा था, तो मैं दिल्ली का ट्रेन था मेरा, उसमें मुझे जो फूड लंच टाइम में मुझे फूड दिया गया था, उस पैकेट के अंदर में स्पून वगैरह नैपकिन वगैरह था, तो उसमें शायद दो तीन नैपकिन थे, तो दो तो मेरा ऑलरेडी बिगड़ गया वहाँ वो फूड का स्टीम वगैरह से वो होकर, दाल वगैरह के साथ लगकर, और एक गिर गया, तो मैं नैपकिन लेस हो गया उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि मैं दूसरा नैपकिन भी नहीं मंगवा सकता किसी के से, तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम जो मैं फेस किया अभी, वो प्रॉब्लम ये ट्रेन में कितने लोग फेस कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मुझे ख्याल आया कि ये नैपकिन और जो स्पून का जो रिलेशन है, ये हर टाइम जोड़ी में रहता है। तो मैंने क्या सोचा कि व्हाई नॉट टू कंबाइन दिस टू प्रोडक्ट इन अ वन प्रोडक्ट। सो मैंने दो तीन डिजाइन ट्राई किया, दे फेल्ड, तो मैंने दूसरा तरीका देखा कि मुझे एक टेबलेट जैसा बनाकर मुझे नैपकिन में एक होल करके उसमें डालना है, जैसे हम लोग मेडिसिन वगैरह निकालते हैं, उस आइडिया को मैंने एडोप्ट करके मैंने इसको स्पून बनाया। और उस इको स्पून को मैंने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में सबमिट किया था, और वो प्रोजेक्ट वहां से भी एक्सेप्ट हो गया है, और मेरा इको स्पून का पेटेंट भी आ चुका है, सक्सेसफुली ग्रांट हो गया है, और एक डिजाइन रजिस्ट्रेशन में भी मेरा कंप्लीटली हो गया है, अब यूटिलिटी पेटेंट भी आ रहा है।
1: As founder of the Timi Innovation Festival, Lami Chane has also been contributing to the promotion of innovation at the grassroots level. His journey demonstrates that innovation need not begin in a laboratory or large institution. It can begin with an individual identifying a problem, developing a solution and taking steps to protect the idea as intellectual property. On how Sikkim can build a stronger culture of innovation among young people, Prashant Lami Chane said.
0: And yes, regarding Timi Innovation Festival. So it was my dream since from my childhood to organize one science fair. Okay? और मैं जब छोटा था तब से, लेकिन मैं जो innovation field में मैं खुद तो project बनाता हूँ, लेकिन मैं बच्चों को भी mentorship देता हूँ। बहुत सारा बच्चे मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, वो भी innovations पे काम कर रहे हैं, उनको भी मैं motivate करता हूँ, और बहुत सारे student तो already national level भी पहुँच चुके हैं, national level, regional level, state level, ये सारा चीज में बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने मेंटरशिप देकर उन लोगों को भी भेजा है, और अभी भी मेरे साथ 10-12 बच्चे मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब करते करते मुझे आइडिया है कि वाई नॉट टू हैव अ वन फेस्टिवल ऑफ इनोवेशंस, और इसमें मुझे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, आवर ऑनरेबल एरिया MLA श्री बेदू सिंह पंसर, चेयरमैन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आवर एंटी भुटिया सर, उन सभी से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उन सब ने मुझे बहुत सारा हेल्प किया, और मुकुल मैम तो ऑलरेडी मेरे ये इनोवेशन में जुड़े हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारा इंकरेजमेंट दिया, और हम लोगों ने सक्सेसफुली तिमी इनोवेशन फेस्टिवल फेज वन हम लोगों ने कंप्लीट किया, और अभी हम लोग तिमी इनोवेशन फेस्टिवल फेज टू हम लोग नेक्स्ट ईयर करने के लिए प्लान में चल रहे हैं, और उसको हम लोगों ने इस बार थोड़ा मॉडल चेंज किया है। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हम लोग का लोकल एरियाज वगैरह के स्कूल्स वगैरह होंगे, तो हम लोग वहाँ से आइडिया थॉन करेंगे पहले वन मंथ, और पहले बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडिया को वो करके हम लोग उसको मेंटरशिप देंगे, हम लोग प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेंगे, और उसके बाद तिमी इनोवेशन फेस्टिवल में हम लोग डिस्प्ले करके उन सभी को हम लोग नेशनल और प्लेटफॉर्म वगैरह के लिए भी हम लोग NIF, जैसे हम लोग का बहुत सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है NIF वगैरह, ये सब में हम लोग हमारा प्रोजेक्ट्स वगैरह को वहाँ पर भी सबमिट करवा देंगे, और ज्ञान वगैरह भी है NGO, तो हम लोग वहाँ पर भी हेल्प करेंगे, और दूसरा भी बहुत सारे हैं, हम लोग वहाँ पर भी नॉमिनेट करेंगे बच्चों को, और इस तरीके से क्या होगा कि एक बच्चे में जो साइंटिफिक टेम्परमेंट है तो वो आगे जा के और ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसीलिए हम लोग मेंटरशिप भी करेंगे और साइंस फेयर भी करेंगे, और हम लोग बच्चों को और सिक्किम को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हम लोग प्राउड मोमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग लगे पड़े हुए हैं। सो तिमी इनोवेशन इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग माइंड्स।
1: Prashant Lami Chane's achievement sends a strong message to aspiring innovators. Every idea has potential, and protecting that idea can be the first step towards opportunity. With Mainak Chatterjee, Diliram Dulal, Akashwani News, Gangtok for Northeast Diary.
2: And folks, that

लीजिए सुनिए फिल्म बावरे नैन से ये नगमा, स्वर है मुकेश और गीता रॉय का। आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का।

0: आरबीआई कहे
1: सठिक आर्थिक आचरण रखे आपनको सुरक्षार ध्यान।
2: कौन आपण आईटीआई प्लस टू डिप्लोमा किंबा बीटेक कंप्लीट करिबा परे निज करियर बूस्ट करिबा को चाहछंती
3: तेबे स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा द्वारा वर्ल्ड स्किल सेंटर रे 1 ईयर एडवांस स्किल डेवलपमेंट कोर्स रे भाग नियंतु जेउथिरे आपनको मिलिबो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग ग्लोबल एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज ओ 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस।
2: बैच 10 सेप्टेंबर 26-27 एडमिशन आरंभ होई सारिछि। आवेदनर शेष तारीख 30 सेप्टेंबर 2000।
3: अधिक जानिबा पई विजिट करंतु www.worldskillcenter.org किंबा कॉल करंतु 1-800-266-002।
4: कम समय रे अधिक फायदा मात्र गोटिए क्लिक रे बढ़िया ओसिला
5: अजोना लिंक्स उपरे क्लिक करंतु नाही। आरबीआई कहे
6: सचेतन होंतु सतर्क रहंतु।

गीता परे पुणी थरे आपण मनंक सहित आमे फेरी आसीछु। आजि 20 सेप्टेम्बर हेउछि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्रीडा दिवस। यूनेस्को एही दिवस को प्रतिवर्ष 20 सेप्टेम्बर रे पालन करे। विश्वविद्यालय जीवन कहिले आम मन को साधारणतः पाठ पढ़ा, परीक्षा, डिग्री, भविष्यत क्यारियर इत्यादि कथा आसे, किंतु जणे छात्र छात्रींक संपूर्ण विकास केवल पुस्तक भीतर।

0: आकाशवाणी कटक प्रचार करुछु प्रायोजित कार्यक्रम एंटरप्राइज इनक्यूबेशन।
1: आम हाथरे कौशल अछि, भल उत्पाद भी अछि, किंतु आम व्यवसाय कोन दिने बड़ बजार जे पहुंच परिबो।
2: नमस्कार, मिशन शक्ति विभाग पक्षर उपस्थापित सशक्त महिला समृद्ध ओडिशार ए विशेष आलोचना को आपण मानकु स्वागत करुछि। मु आशुतोष
1: आउ मु दिबालिन। आज आम एभली एक विषय उपरे आलोचना करिबा जहां ग्रामीण महिला को उद्योग को आहुरी आगो को नबारे सहायक हेबो।
2: अर्थात आचार प्रस्तुति, सिलई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रक्रियाकरण भली महिला परिचालित उद्योग गुड़िक पई कोनो एक बड़ सुजोग।
1: निश्चय ओडिशा जीविका मिशन एवं आईआईटी भुवनेश्वर मिलित सहयोग रे परिचालित उद्यम अंकुरण कार्यक्रम माध्यम रे उद्योगी को मिलिबो आधुनिक प्रजुक्ति, उन्नत पैकेजिंग, ब्रांडिंग, बजार संजोग एवं विशेषज्ञों।

0: मार्गदर्शन।
1: अच्छा जदि के नुआ व्यवसाय आरंभ करबा को चाहंती से कोन ही कार्यक्रम रे आवेदन करि परिबे?
0: ना, एही कार्यक्रम टी सक्रिय थिबा महिला परिचालित उद्योग गुड़ी करो विकास पाई आवेदनकारी अति कम रे 12 मास धरी सक्रिय थिबा स्वयं सहायक गोष्ठी रो सदस्य होइथिबा आवश्यक।
1: एहा द्वारा केउ माने लाभान्वित होई परिबे?
0: व्यवसाय रो वार्षिक आय पई निर्धारित मानदंड पूर्ण करबा को हेबो। पंजीकृत व्यवसाय पई 20 लाख टंका, गोष्ठी भित्तिक उद्योग पई 15 लाख टंका एवं व्यक्तिगत उद्योग पई 12 लाख टंका वार्षिक आय रहिबा आवश्यक।
1: जदि जीएसटी एफएसएस एआई किंबा अन्यन्य पंजीकरण आवश्यक हुए सेति पई कोन सहायता रहिछि?
0: एही प्रोग्राम माध्यम रे वैषयिक ओ आइनगत सहायता प्रदान करा जिवो। एहा सह व्यवसाय परामर्श उत्पादर गुणवत्ता वृद्धि एवं बड़ बाजार सह संजोगर सुजोग मध्य मिलिबो।
1: तबे उद्योग गुडी कर चयन केउ आधार रे करा जिवो?
0: उद्योग गुडी को 100 मार्क रो मूल्यांकन आधार रे चयन करा जिवो। एथिरे सर्वनिम्न 60 मार्क रखिबा आवश्यक। संपूर्ण महिलांको मालिकाना किंबा परिचालन रे थिबा उद्योग को 15 मार्क रो अतिरिक्त सुविधा मध्य मिलिबो।
1: चयन परे केउ प्रकार रो सहायता मिलिबो?
0: चयन करा जाइथिबा 18 जन उद्योगी को प्रतियोगिता मूलक अनुदान पांठि अधीन रे निजरा व्यवसाय योजना उपस्थापन करी 15 लाख टंका पर्यंत अनुदान पाई परिबे। एहा सह व्यवसाय विस्तार पई 0% सुद्ध रे सॉफ्ट लोन सुविधा मध्य उपलब्ध रहिछि।
1: तबे आवेदन किपरि करा जिवो?
0: एति पई ग्राम पंचायत स्तरीय संघ माध्यम रे किंबा सीधा सडक मध्य आवेदन करि परिबे।
2: आवेदन रो शेष तारीख 21 सेप्टेम्बर 2026।
1: पुणि थरे मने रखंतु 21 सेप्टेम्बर 2026।
0: योग्य महिला उद्योगी माने शेष मुहूर्त को अपेक्षा न करी शीघ्र आवेदन करंतु। आजिरो छोट ग्रामीण उद्योग होई पारे आसंता कालीरो बड़ ब्रांड।
1: कौशल तांकर, उद्यम तांकर, एबे सफलतार परिचय मध्य तांकर।
3: सशक्त महिला समृद्ध ओडिसा।
4: सुनिले प्रायोजित कार्यक्रम एंटरप्राइज इनक्यूबेशन।
5: नए जमाने की नई तस्वीर।
6: यत बळ जे कार्यक्रम रे लेख रिपोर्टर कुलु आकाशवाणी कटक केंद्र रो श्रोता बंधु आपण कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी भवानी पाटणा केंद्र रो।

0: संस्कृति मूल्यबोध एवं परम्परार एक निष्ठ प्रवक्ता आकाशवाणी
1: सबु वर्ग र सबु वयस र मनोरञ्जन पाई
2: आकाशवाणी भानीपाटणा समय संध्या 6 बजे 5 मिनिट हेबा पई जाउछि श्रोता बंधु इंग्राजी संवाद शुणंतु रिलेक रिपोर्टर करुछु आकाशवाणी दिल्ली रो
3: This is Akashwani. The news is read by Nishit Kumar. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times stresses the urgent need for strong climate action to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. She called for stronger cooperation among stakeholders at the local, regional and global levels to address the challenges posed by climate change.
4: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
3: President Murmu said farm ponds can help local communities in water-stressed regions. On the first day of the conference yesterday, Prime Minister Narendra Modi addressed

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: किए
2: आपनको सह किछि मीठा मीठा कथा किछि अनुभव किछि अनुभूति र कथा
3: आमा सह कथा हुन्तु फोन माध्यम रे प्रत्येक गुरुवार दिन 11टा रु 11:30 मिनिट पर्यंत
2: आमो फोन नम्बर हेला
4: 0667029562329568
3: मने रखन्तु 0667029562329568 एवं एहार प्रसारण सुनंतु प्रत्येक रविवार दिन सकाळ 9टा रु 10टा पर्यंत
0: हेलो
1: हेलो
0: किए
2: हेलो आकाशवाणी भवानी पाटना।

0: आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुछन तापस रंजन साहू जुहार पहला मुखिया खबर महानदी जल विवाद के नेकिरी भुवनेश्वर थाने ओडिशार छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भितरे हेछि आलोचना विकसित भारत लगी शहे हप्ता धरिकी निशामुक्त जुव अभियान अधीनती देशर 1067 जगान होउछि राष्ट्रीय संकल्प समारोह रिहाती थिबा रंधा गैस बुकिंग लगी आइबा मासर 1 तारीख नु आधार संयुक्त बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हेबा बाध्यतामूलक और उत्तर आंडामान सगर नु हेथिबार लघुचाप रो बले आइबा 25 तारीख तक राज्यर भिन्न भिन्न जगान होइ पारे वर्षा। एथरो पूरा खबर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आजठानु दुईदिनिया ओडिशा गस्तती आसीछन। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को से भुवनेश्वर ठाने भेटिकरी महानदी जल विवाद के नेकरी आलोचना करिछन। तार समाधान लगी दुही राज्य केन्द्रीय जल आयोग निष्पत्ति के सहमति जनईछन। केन्द्रीय जल आयोग जेन निष्पत्ति ने दुही राज्य ग्रहण करेंगे बोलकरी श्री साय कहिछन। महानदी के नेकरी केनसी प्रकार जल विवाद नाइन बोलकरी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कहिछन।
1: महानदी जल विवाद का अब कोई मामला नहीं है और बहुत जल्दी इसका निपटारा होने वाला है, पर हम लोग सब चर्चा कर चुके हैं। दिल्ली में दोनों मुख्यमंत्री और अधिकारियों की मुलाकात हुई थी और उस दिन हम लोग CWC को सहमति दे दिए हैं दोनों मुख्यमंत्री कि दोनों प्रदेश के हित में जो भी CWC निर्णय करेगा दोनों प्रदेश के लिए मान्य रहेगा।
0: बैठक ती महानदी जल विवाद समाधान सहित दुही राज्य संगे जड़ित भिन्न भिन्न प्रसंग बाबदे भी आलोचना होइछि। विकसित भारत लगी शहे हप्ता धरिकी चली निशामुक्त जुव अभियान अधीनती आज सारा देशे जुवपीढ़ी एकठनिया होइछन। जुव व्यापार और क्रीड़ा मंत्रालय सूचना अनुसार देशर 1067 जगान राष्ट्रीय संकल्प समारोह कर 471 जिलानु थिबार माई भारत कार्यालय और सहभागी संस्था मानक तरफ 596 जगानु कार्यक्रम मान आयोजन समारोह थी निशा मुक्ति शपथ स्वाक्षर अभियान पथप्रांत नाटक स्लोगान लेखा और आलोचना बगर कार्यक्रम होती भिन्न भिन्न शिक्षानुष्ठान स्थानीय संगठन और अलग अलग अंशीदार सामिल होइछन। इ नुआ खेप अभियान गोलाकालनु मूल होइछि। राज्य चलती आर्थिक बछर लगी श्री जगन्नाथ दर्शन योजना आज उपमुख्यमंत्री प्रभाती पुरीडा शुभारंभ करिछन। उपरबेला आवासी जरिए भुवनेश्वर लोकसेवा भवन श्रीमती परिडा योजनार शुभारंभ करिछन। पहला खेपे 3 जिलार 910 जन श्रद्धालु दर्शन करबे। अक्टोबर 17 तारीख तक 13 जिलार 10553 जन श्रद्धालु दर्शन करबे। योजना थी आर्थिक हिसाब से पछुआ वर्गर श्रद्धालु मानक पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के यात्रा दर्शन और महालिया महाप्रसाद मिलवार सुविधा कर खास कर 60-75 बछर बयसर वृद्ध आर 75 बछर तक विधवा मानक योजना थी सामिल कर। पुलिस अधिकारी मानक लगी सामाजिक गणमाध्यम परिचालना के नेकरी कमिशनरेट पुलिस तरफ निर्देशावली जारी करा। पुलिस पोशाक थी रही सामाजिक गणमाध्यम थी फोटो और वीडियो पोस्ट करबारके मना करा। संवेदनशील जगानु काम करुथिबार समयाथी फोटो और वीडियो उठाबारके नेकरी कटकना जारी करा। लोकभवन लोकसेवा भवन लिंगराज मंदिर हाईकोर्ट और RBI बागिर जगा मानके भी फोटो और वीडियो उठाबार उपरे प्रतिबंधक जारी करा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसेवार 25 बछर पूरा होती जनसेवानु देश सेवा मंत्र आधारित जयजात्रार यहाँ दत चली निरंतर अंगीकार बद्धता के इटा दर्शाऊे सेवा और सुशासन रो दूरदृष्टि परिचालित होकरी सरकार 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य पूरा करबार लगे निरंतर काम करसुचन। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण दिगे समर्पण जीवन के बदलाउे सेवा संकल्प अभियान आजर खास कड़ी थी। आसुन सुनमा गुटे जिला गुटे उत्पाद ODOP बाबदे आघनु बहुते जिलार स्थानीय उत्पाद और हस्तकला के ब्रांडिंग बजार संजोग और स्किल अभाव रही जेन्थिर लगी कारीगर और चाषी मान कमाणी कम रोला। प्रधानमंत्री श्री मोदी दूरदृष्टि संपन्न विचारधारा इ समस्या समाधान करपारी इथिर लगी केन्द्र सरकार ODOP योजना मूल कर। योजना थी फी जिला निजर श्रेष्ठ उत्पाद बाछीछन केन कपड़ा केनठाने फल तो केन हस्तकला और शस्य राज्य सरकार से ही गुटे उत्पाद पछाड़े ब्रांडिंग GI टेग ई कमर्स आउ रप्तानी साहज जुगे देउछन जेन्थिर लगी जेन जिलार केनसी अर्थनैतिक परिचय नाई थी सेमाने भी निजर परिचय पाई कारीगर चाषी मान घरे रहीकि स्थानीय बजार सहित बाहर भी बड़ बजार पाई पारुछन।

0: ये क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: जलवायु परिवर्तन मानविक स्थितिर विभिन्न स्तरें असंतुलितर कारण बोली राष्ट्रपति कहिछन्ति। जैव विविधता ह्रास, जल उत्स उपरे चाप एवं मृत्तिका क्षय परिवेश असंतुलनर उदाहरण। राष्ट्रपति कहिछन्ति जातीय ग्रीन ट्रिब्युनाल परिवेश संपर्कित आईनगत मामलें प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाए। जलवायु संपर्कित विभिन्न विवादर एहि ट्रिब्युनाल त्वरित समाधान करिथाए। सम्मेलनर उद्यापनी अधिवेशन रे केन्द्र शक्ति, गृह और सहरांचल विकास मंत्री मनोहर लाल, सुप्रीमकोर्ट विचारपति जस्टिस बी भी नागरत्न, जातीय ग्रीन ट्रिब्युनाल अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव प्रमुख योग देइछन्ते। युक्तराष्ट्र आमेरिकार न्यूयॉर्कठारे जातिसंघ साधारण अधिवेशनर 81तम बैठकरे वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉ एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधि दलर नेतृत्व नेबे। चलित मास 26 तारिखर हेबाकु थिबा एहि उच्चस्तरीय अधिवेशनरे श्री जयशंकर उद्बोधन देबार कार्यसूची रहिछि। गस्त कालरे डॉ जयशंकर अनेक नेतृवृन्दक सह विभिन्न प्रसंगरे द्विपाक्षिक आलोचना करिबे। नुआदिल्लीरे आसंता मंगलवार दिन नवम भारत आंतर्जातीय जल सप्ताह 2026 सम्मेलनी आरंभ हेब। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एही पांचदिनिया सम्मेलनी को उद्घाटन करिबे। स्थिर जलवायु पई जल परिचालना प्रसंग आधार रे एही सम्मेलनी आयोजित हेउथवा जलशक्ति मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि। एही आंतर्जातीय कार्यक्रम रे नेदरलैंड्स ओ जर्मनी अंशीदार देश भाबे शामिल हेबे। देशर 14 राज्य तथा 6 केंद्रीय मंत्रालय और विभाग एहि सम्मेलनी रे जोग देबार कार्यसूची रहिछि। सम्मेलनी अवसर रे मंगलवार ठारु शुक्रवार पर्यंत 4-दिनिया अंतर्जातीय प्रदर्शनी मध्य आयोजित हेब। जल परिचालना क्षेत्र रे प्रजुक्ति विद्यार उपयोग, समस्या समाधान तथा गवेषणात्मक फलाफल संपर्क रे तथ्य प्रदान पई एहि प्रदर्शनी एक आंतर्जातीय मंच प्रदान करिब। पानीय जल और परिमल विभाग द्वारा मंगलवार ठारु गुरुवार पर्यंत द्वितीय अंतर्जातीय वास सम्मेलनी मध्य आयोजित होबार कार्यसूची रहिछि। एही सम्मेलनी रे पानीय जलर उपलब्धता, परिमल भित्तिभूमि विकास, परिच्छन्नता तथा जनस्वास्थ्य उपरे ध्यान केन्द्रीभूत हेबो बोली मंत्रालय कहिछि। भारत और जापान मिलित वायु सेनाभ्यास वीर गार्डियन 2026 जोधपुर स्थित वायुसेना घाटी जारी रही। 14-दिनिया समराभ्यास आसंता मंगलवार दिन उद्यापित हेब। उभय देशर वायुसेना मध्यरे उन्नत कार्यदक्षता एवं व्यापक वृत्तिगत अभिज्ञता आदान प्रदान उपरे एही अभ्यास केन्द्रीभूत होईछि। भारतीय वायुसेनार स्वदेशी प्रस्तुत हालुका युद्ध विमान तेजस, SU-30 MKI एवं राफेल भली युद्ध विमान एवं जापानर F-2A लड़ुआ विमान एथिरे अंशग्रहण करुछन्ते। भारत जापान द्विपाक्षिक सुदृढ़ रणनैतिक सहभागिता को एहि समराभ्यास प्रतिफलन करुछि। आपण माने संवाद सुनुछन्ते आकाशवाणी रो। उत्तर प्रदेश संत्रासवादी निरोधी स्क्वाड ATS पक्षर् आज वाराणसी ठारे एक संघर्ष रे नक्सल कमांडर ब्रिजेश गंजू और गोपाल सिंह भोक्ता निहत होइछि। झारखंड बेआईन घोषित संत्रासवादी गोष्ठी तृतीय प्रस्तुति कमिटर गंजू दलर मुख्य थिला। दीर्घ 2 दशंधि धरी से फेरार रहिथिला। झारखंड पुलिस एवं जातीय तदंतकारी संस्था पक्षरु ता संपर्क रे सूचना देबा पई 30 लाख टंकार पुरस्कार राशि घोषणा करा जायथिला। गोवाठारे आसंताकाली दिशा 2.0 योजना अंतर्गत एक कर्मशाला अनुष्ठित हेब। आईन एवं न्याय मंत्रालय अधीनस्थ न्याय विभाग पक्षर एक कर्मशाला आयोजन करा। प्रजुक्ति विद्याभित्तिक आईन सेवा, आईन सचेतनता पदक्षेप जरिया न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने एक कर्मशाला लक्ष्य रही। गोवा राज्यपाल पशुपति अशोक गजपति राजू एवं आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक कर्मशाला जोगदेवे। कोलकातारे आसंताकाली मत्स्य उन्नयन संपर्क एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित हेब। केन्द्र मत्स्य विभाग पक्षर होबाकु थिबा बैठक में विभागीय मंत्री राजीव रंजन सिंह एवं पश्चिमबंग मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सह अध्यक्षता करिबे। पश्चिमबंगे थिबा मत्स्य संपदर प्रभुत क्षमता आकलन पई रूपरेख प्रस्तुत करिबा एही बैठकर मूल उद्देश्य। पश्चिमबंगे मत्स्य चाष संपर्कित विभिन्न योजनार अग्रगति संपर्क में समीक्षा।

0: ଆକାଶବାଣୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର ପରସ୍ପର।
1: श्रोताबंधु आपण कार्यक्रम शुणुछन्ती आकाशवाणी भवानीपाटणा केन्द्रर कार्यक्रम प्रचारित होउछि मीडियम वेब्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ज एफएम माध्यमरे 100.3 मेगाहर्ज एवं न्यूज अन एयर एफ माध्यमरे। श्रोताबंधु प्रचार करुछु केतोटी हिंदी भक्ति गीत। प्रथमे शिल्पी हेले सोनू निगम, शिल्पी गायछन्ती बलबीर निर्दोषक रचनारू।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विशेष शुक्ला। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का हर अपडेट, खेल के मैदान की हर खबर और एशियन गेम्स के अधिक क्लेवर के साथ। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर, जहां पर आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे जापान के नगोया में जारी 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की, जहां भारतीय महिला निशानेबाजों ने अपने सटीक निशानों की बदौलत पदक तालिका में लगाई है भारत की हाजिरी। इसके बाद जानेंगे सुचिका तारियाल की कहानी, जिन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत के लिए पदक पक्का करके जापान में रचा है इतिहास। वही हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक बार फिर आ पहुंची है एशियाई खेल के फाइनल में। जानेंगे आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले का पूरा हाल और इसके साथ ही कार्यक्रम में चर्चा होगी भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम के दमदार प्रदर्शन की तथा बैडमिंटन और टेबल टेनिस से आई खुशखबरियों की। तो जापान में 20वें एशियाई खेलों का आगाज हो गया है और इसके साथ ही आगाज हो गया है दिन ब दिन नए खिलाड़ियों और सितारों के उदय का। इसी कड़ी में भारतीय निशानेबाजों ने आज अपने सटीक निशानों से जापान के आइची नगोया में एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत का पदार्पण कराया। एलावेनिल वलारिवेन ने आज महिलाओं के व्यक्तिगत और टीम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया।
1: सिल्वर मेडल, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर व्हाट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द एंटायर नेशन। वलारिवेन 252.4, सेकंड सिल्वर ऑफ द डे, सेकंड मेडल ऑफ दीज गेम्स फॉर दिस लेडी।
2: यू हैव सीन द फोकस इन हर फेस व्हाइल शूटिंग, नाउ यू सी हर स्माइलिंग, कांग्रेचुलेशंस टू हर।
3: भारत की एलावेनिल वलारिवेन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक हासिल किया। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता एलावेनिल ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। स्पर्धा का स्वर्ण पदक जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ जीता। इस शानदार उपलब्धि पर एलावेनिल ने अपने अनुभव कैसे साझा किए, आइए सुनते हैं।
4: For that one given shot. I'm very thankful to the entire government, to the state government for implementing such schemes that help the athletes grow. With all the schemes that have been coming up, we definitely

0: definitely can say that India is rightly towards being called a sporting nation, and we are just miles away from achieving our epitome. I think it was more about following my technique, following my process, and be the absolute best that I can do for that one given shot. I'm very thankful to the entire government, to the state government, for implementing such schemes that help the athletes grow. With all the schemes that have been coming up, we definitely can say that India is rightly towards being called a sporting nation, and we are just
1: इससे पहले भारत ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एला वेनिलवाला रिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। सोनम ने व्यक्तिगत क्वालिफाइंग में चौथे स्थान पर रहते हुए भारत के लिए 634.1 अंक हासिल किए, जबकि ओलंपियन एला वेनिल 633.5 अंकों के साथ सातवें स्थान पर रही। चीन 1904.2 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि भारत ने 1897 अंकों के साथ अपना दूसरा स्थान हासिल करते हुए 2026 एशियाई खेलों में अपना पहला पदक अर्जित किया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
2: तो पदार्पण हो चुका है भारत का, और इसके बाद एक के बाद एक आज भारत ने कई खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने लिए पक्के कर लिए हैं। और इन तमाम परिणामों के बीच आज के दिन की मुख्य सुर्खी रही हरियाणा के रोहतक से आने वाली मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी सुचिका तारियाल। सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए में भारत के लिए पहला पदक पक्का कर दिया है। 36 वर्षीय सुचिका ने महिलाओं के ट्रेडिशनल कैटेगरी की 60 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया की अतलाचिन मेघ बेगलमा को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सुचिका कल स्वर्ण पदक की ओर कदम बढ़ाने के इरादे से सिंगापुर की तेव हुई हूं के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। इससे पहले आज इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सुचिका ने क्या कहा, सुनते हैं।
3: ये मेडल मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है और मेरे कोचेस ने मेरे ऊपर बहुत हार्ड वर्क करा है। मेरे फैमिली ने मेरे ऊपर बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मुझे मतलब मेरे ऊपर खर्च करी है और मुझे सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर मेरा मेडल आएगा तो इंडिया के लिए एमएमए में ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी।
2: तो एक शानदार खिलाड़ी जिसने अपने शानदार प्रदर्शन से, एक ऐसा खेल जो भारत में परंपरागत नहीं है, जहां पे आपको जूडो, टाइकोंडो, काफ़ी हद तक बॉक्सिंग, कई विदेशी खेल विधाओं का एक साथ संयोजन देखने को मिलता है और विश्व के सबसे कठिन खेलों में शुमार, और इतनी ही कठिन है सुचिका की कहानी। वो 36 वर्षीय हैं। आज से 24 साल पहले जब वे महज 12 वर्ष की उम्र में थी, तो एक छेड़छाड़ की घटना के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब मैं अपनी आत्मरक्षा स्वयं करूँगी, और स्वयं के डिफेंस के लिए उन्होंने इस खेल को सीखा। और आज जापान में जब वो भारत के लिए पदक पक्का कर रही हैं, तो कह सकते हैं कि खुद की आत्मरक्षा से लेकर के भारत का आत्मगौरव बढ़ाने तक इस खिलाड़ी ने हर मोर्चे पर अपना योगदान दिया है। विशेष एक शानदार खिलाड़ी के रूप में पिछले 5 से 6 साल में हमने सुचिका को देखा है।
4: बिल्कुल शक्ति, सुचिका का जो सफ़र रहा है वो बेहद शानदार रहा है। इन्होंने अपना डेब्यू 2017 में किया था। इसके बाद इन्होंने एमएमए से ब्रेक ले लिया, क्योंकि इनको अपनी तैयारी के लिए समय चाहिए था। इस दौरान वह जूडो और जी जुत्सु में खेलती रहीं। 2024 में एक बार फिर उन्होंने एमएमए में वापसी करी और भारत के लिए पदक एशियन गेम्स में सुनिश्चित किया। इससे पहले वह एमएमए एशियन चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, साथ ही साथ जूजित्सु में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड अपने नाम कर चुकी हैं।
2: जी बिल्कुल, और हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में जूनियर जूडो की कोच के रूप में कार्यरत थी, और कहा जाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खेलनी होती थी तो अनपेड लीव लेकर के जाती थी, और ये तमाम मेडल्स और तमाम ट्रॉफियां इस खिलाड़ी ने भारत को दिए, और एक और पदक अब उनकी झोली में आने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद अब बात क्रिकेट की। एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट में गत विजेता भारतीय टीम ने बांग्लादेश को सेमीफाइनल में 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
5: Will this be catching practice? And that shall bring an end to Bangladesh's innings. They bundle out for 81 and India find a place in the final. The hunt for gold will continue as they'll be up against Sri Lanka in their next encounter. India win by 114 runs.
2: तो ऐसे ही एक सन्नाटे के बीच जापान में भारतीय टीम ने एक बार फिर अपनी जीत की पताका लहराते हुए फाइनल में प्रवेश किया है, और महज एक कदम दूर अपना खिताब

0: जाने से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम महज 81 रन पर सिमट गई और मुकाबले में स्मृति मंधाना ने T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने आज एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। स्मृति मंधाना ने बांग्लादेश के खिलाफ एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में 19 गेंदों पर ताबड़तोड़ अंदाज में 37 रनों की शानदार पारी खेलकर ये उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में न्यूजीलैंड की पूर्व क्रिकेटर सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया। अब उनके नाम 171 पारियों में 4788 रन है। इस मैच से पहले सूजी बेट्स से आगे निकलने के लिए उन्हें सिर्फ 8 रन चाहिए थे। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत करते ही 7 गेंदों में ये उपलब्धि अपने नाम कर ली। मंधाना और बेट्स पहले से ही पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बाबर आजम से आगे थी। सूची में मंधाना के बाद सूजी बेट्स 4758 दूसरे और पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे नंबर पर हैं। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो अब मंगलवार को फैसला होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले के बाद स्वर्ण पदक किसकी झोली में आता है। और ऐसा ही शानदार प्रदर्शन किया आज भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने भी, जिन्होंने जीत के साथ अपने अभियान का आरंभ किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया, जबकि पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 से मात दी। महिला टीम की जीत में दीपिका ने 8 गोल किए, वहीं पुरुष टीम की ओर से दिलप्रीत सिंह ने 4 गोल दागे।
2: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पूल ए के पहले मुकाबले में इंडोनेशिया को 13-1 से हराकर अपने खिताब बचाओ अभियान की मजबूत शुरुआत की। भारत ने पहले क्वार्टर में 2 गोल किए और दूसरे क्वार्टर में लगातार 5 गोल दागकर हाफ टाइम तक 7-0 की बढ़त बना ली। दिलप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, जबकि राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने भी गोल किए। इंडोनेशिया ने तीसरे क्वार्टर में 1 गोल किया, लेकिन भारत की ओर से दिलप्रीत ने जवाबी हमला करते हुए हैट्रिक पूरी की और बाद में अपना चौथा गोल भी किया। शिलानंद लाखड़ा और सुखजीत सिंह ने 2-2 गोल किए। जुगराज सिंह ने भी गोल किया और भारत ने 13-1 से मुकाबला जीत लिया। वहीं भारतीय महिला टीम ने पूल बी के अपने पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। दीपिका ने ताबड़तोड़ 8 गोल किए, इशिका ने 3, जबकि ललथंग लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल किए। बलजीत कौर, नवनीत कौर, लालरेम सियामी और साक्षी राणा ने भी 1-1 गोल किया। भारत ने अपना दबदबा कायम रखते हुए हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में भी भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा। दीपिका ने लगातार 4 गोल करके भारत की बढ़त 13-0 कर दी। अंत में अन्य खिलाड़ियों के गोल की मदद से भारत ने मुकाबला 19-0 से अपने नाम किया। इस मुकाबले के साथ गोलकीपर सविता पुनिया ने भी खास उपलब्धि हासिल की। ये उनका 320वां अंतरराष्ट्रीय मुकाबला था। इसके साथ ही वे वंदना कटारिया के साथ भारत की सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई। महिला टीम का अगला मुकाबला 21 सितंबर को इंडोनेशिया से होगा, जबकि पुरुष टीम 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: तो जारी है तमाम जीत का सिलसिला और पदक पक्के करने की दौड़। और अब बात बैडमिंटन और टेबल टेनिस की कर ली जाए, जहां भारतीय महिला टीम ने आज बैडमिंटन कोर्ट पर अपने शानदार प्रदर्शन से क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं महिला टीम ने भी अपने ग्रुप एफ के दोनों मुकाबले जीत करके कल अपना तीसरे मुकाबले की ओर स्थिति को मजबूत कर लिया है। विशेष बैडमिंटन और टेबल टेनिस को लेकर क्या अपडेट है?
3: शक्ति, बैडमिंटन में आज भारतीय महिला टीम ने डोमिनेटिंग अंदाज में जीत दर्ज करी है। पीवी सिंधु ने पहले, उन्नति हुड्डा ने दूसरे और तन्वी शर्मा ने तीसरे गेम में लगातार 2-2 सेट जीतकर मुकाबले को अपने नाम किया है। अब भारतीय टीम का जो मुकाबला है 22 सितंबर को जापान से होगा। अगर टेबल टेनिस की बात करें तो भारतीय टीम ने पहले इंडोनेशिया से मुकाबला किया, जहां 3-0 की जीत दर्ज करी। सथिया ज्ञान सेकरन, मानव ठक्कर और मानुष शाह ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही साथ महिला टीम ने भी इंडोनेशिया को 3-0 से हराया, जहां श्रीजा अकुला, दिया चिताले और यशस्वी ने इंडोनेशिया की टीम को कोई भी मौका नहीं दिया। हालांकि एक हार का सामना भी करना पड़ा है पुरुष टीम को, ईरान से, जहां पर मानुष शाह, मानव ठक्कर और हरमीत देसाई अपना अपना मुकाबला हार गए।
0: जी, तो ये तो था आज के खेलों का पूरा हाल, और इसके एवज में भी कई और प्रतियोगिताएं भी हुई जहां भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन दिए हैं। अब सबकी नज़रें अगले दिन पर होंगी। कल के दिन भारत की नज़रें किन खिलाड़ियों पर और किन खेलों पर टिकी होंगी?
3: कल के प्रमुख मुकाबलों की अगर बात करें शक्ति, तो शूटिंग में भारतीय खिलाड़ी

0: कल सुबह प्रतिस्पर्धा करेंगे। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में हिमांशु ढिल्लों की अगुवाई वाली टीम पर भारत के समर्थकों की नजरें रहेंगी। वहीं स्कीट में मेंस और वुमेन्स इंडिविजुअल प्रतियोगिताएं होंगी। टेबल टेनिस में महिला टीम कल पाकिस्तान से मुकाबला करेगी। वहीं सुचिका तारियाल 60 किलोग्राम एमएमए में मुकाबला जीतकर कम से कम रजत पदक पक्का करने का प्रयास करेंगी। महिला हॉकी में भारतीय टीम का मुकाबला सुबह 9:30 बजे इंडोनेशिया से होगा और भारत के जांबाज कबड्डी खिलाड़ी भी जापान से भिड़ते नजर आएंगे। इसके बाद सितारों से सजी बैडमिंटन पुरुष टीम, जिसमें लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, सात्विक चिराग, वो बांग्लादेश के सामने चुनौती पेश करेंगे। दोपहर में पुरुष टेबल टेनिस पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला करेगी और महिला टीम बांग्लादेश के सामने चुनौती पेश करेगी।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि एक बहुत व्यस्त शेड्यूल खिलाड़ियों के लिए भी और उनके साथ साथ तमाम दर्शकों के लिए भी। और आपने बैडमिंटन टीम का जिक्र किया, जिसने इसके पहले एशियाई खेलों में जो चीन में हुए थे होंगजोंग में, वहाँ पे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी का फाइनल मुकाबला, जिसने भारत को पहली बार बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जिताया था और लक्ष्य सेन का कांस्य पदक। तो कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी भी कल से अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए उत्सुक होंगे और उत्साहित होंगे।
0: बिल्कुल शक्ति, ये सभी खिलाड़ी कल भारत को एक पदक की नई उम्मीद देने के लिए तैयार हैं और अपने शानदार प्रदर्शन से कल कई पदक सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।
1: जी बिल्कुल, कई पदकों पर नजर होगी। हालांकि आज भारत के लिए एक छोटी सी दुर्भाग्यशाली खबर ये रही कि टैगबॉल में जहां भारत को आज कांस्य पदक की उम्मीद थी, भारत उसमें नाकाम रहा और कह सकते हैं कि सेमीफाइनल में वो दौड़ भारत हारता हुआ नजर आया।
0: जी बिल्कुल शक्ति, टैगबॉल जो कि एक नया खेल है भारतीय खिलाड़ियों के लिए, तो उसमें भारत को एक निराशा हाथ लगी है, लेकिन ये एक नया खेल है तो हमें उम्मीदें आगे जरूर रहेंगी।
1: जी बिल्कुल, एक नया खेल जहां भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीदें होंगी। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
3: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं।

0: से भूजल भी रिचार्ज होता है।
1: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
1: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितम्बर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।
5: ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महा

0: निदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल एटीएस टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और एनआईए ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष

0: उनके 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
1: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
2: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बन। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
1: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
3: सूर्यकिरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
4: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनाव का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप

0: के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation to tackle rising natural disasters, addresses conference on future of environment and climate dynamics in New Delhi. India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF chief AP Singh says first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in defense ties. Naxal commander carrying 30 lakh rupee bounty killed in encounter with Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Ukraine fires over 1,000 drones at Russia in largest ever attack, including hundreds at Moscow oil refinery hit. And at Asian Games, India bagged 2 silver medals in shooting. Women's cricket team reaches final and badminton team enters quarterfinal. Men's and women's hockey teams begin campaigns with wins in Japan. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent time underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability, and land resources.
2: Climate change मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। Biodiversity loss, water stress, और land degradation इससे गहराई से जुड़े हैं। Water stress वाले क्षेत्रों में farm ponds स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये ना केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं। इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
1: The president said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts, but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur.

0: ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ନାଟକ କ୍ରମରେ ଶୁଣିଲେ ନାଟକ ଦିଗ୍ବଳୟର ସେ ପାଖେ ମୂଳ ହିନ୍ଦୀ ରଚନା ଅଞ୍ଜଳି ଶର୍ମା, ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ଗୌର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଧୀରଜ ଚୌଧୁରୀ, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ରବି ପଣ୍ଡା, ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାମଲ, ଶରତ କୁମାର ମାଝି, ଗୌର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦିଲୀପ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରୀତି ମହାପାତ୍ର, ସୁଷମା ମିଶ୍ର, ବନପ୍ରଭା ପରିଡ଼ା, ଦୀପ୍ତି ଦାସ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ।
1: आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में हम आपको वी आर नटराजू और उनके साथियों द्वारा प्रस्तुत नादस्वरम वादन सुनवा रहे हैं। वी आर नटराजू कर्नाटक के कोलार जिले के बेथ मंगला के एक प्रतिभाशाली नादस्वरम वादक हैं। आप एक समृद्ध और विशिष्ट संगीत परंपरा वाले परिवार से आते हैं। बहुत कम उम्र में ही आपका संगीत से परिचय हुआ। आपके पिता विद्वान वी रमेश आपके प्रथम गुरु रहे और उन्होंने नटराजू के संगीत व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिता के मार्गदर्शन में आपने न केवल नादस्वरम वादन का प्रशिक्षण प्राप्त किया बल्कि कर्नाटक शास्त्रीय गायन का भी अभ्यास किया, जिससे शास्त्रीय संगीत की मूलभूत अवधारणाओं में आपकी मजबूत नींव तैयार हुई। नादस्वरम परंपरा के प्रति अपनी गहरी रुचि और समर्पण के साथ वी आर नटराजू ने आगे चलकर कई प्रतिष्ठित गुरुओं से उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किया। वी आर नटराजू आकाशवाणी बेंगलुरु के ए ग्रेड कलाकार हैं। 25 वर्षों से अधिक समय से वे मंच पर सक्रिय हैं और नादस्वरम की परंपरा के एक समर्पित साधक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। आपकी प्रस्तुतियां अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर हुई हैं। आपने देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रसिद्ध नादस्वरम और तविल विद्वानों के साथ संगत करने का भी गौरव प्राप्त किया है। संगीत के प्रति आपकी निष्ठा और योगदान को अनेक पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आज की प्रस्तुति में आपके साथ विशेष तविल पर एस सुधाकर संगत कर रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। We bring you Nadaswaram recital by V.R. Nataraju and party. V.R. Nataraju is an accomplished Nadaswaram artist from Bethamangala in Kolar district, Karnataka. Belonging to a family with a strong and distinguished musical tradition, he was introduced to music at a very young age. His father, Vidwan V. Ramesh, was his first guru and played a significant role in shaping his musical personality. Under his father's guidance, V.R. Nataraju received training not only in Nadaswaram but also in Carnatic vocal music, developing a strong foundation in the fundamentals of classical music. With a keen interest and dedication towards the Nadaswaram tradition, V.R. Nataraju subsequently pursued advanced training under several eminent masters. V.R. Nataraju is an A-grade artist of Akashvani Bengaluru. His performances have been presented at important platforms. He has also had the privilege of accompanying several celebrated Nadaswaram and Tavil Vidwans across different parts of India. His dedication and contribution to music have been recognized through several awards and honors. In tonight's performance, he is accompanied on special tavil by S. Sudhakar.
1: V.R. Nataraju और उनके साथी अपने नादस्वरम वादन का आरंभ त्यागराज स्वामी की रचना अभिष्ट वरदा से कर रहे हैं। यह रचना राग हंस ध्वनि और आदि ताल में निबद्ध है।
2: V.R. Nataraju and party begin their Nadaswaram recital with अभिष्ट वरदा, a composition of त्यागराज स्वामी set in Raga Hamsadhvani and Adi Tala.

0: अगली प्रस्तुति है त्यागराज स्वामी की रचना शशि वदना, जो राग चंद्र ज्योति और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज शशि वदना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी सेट इन राग चंद्र ज्योति एंड आदि ताला।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे हैं वीआर नटराजू और उनके साथियों का नादस्वरम वादन। आपके साथ विशेष तविल पर एस सुधाकर संगत कर रहे हैं।
1: इंदि रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, यू आर लिसनिंग टू नादस्वरम रिसाइटल बाय वीआर नटराजू एंड पार्टी। ही इज अकंपनीड ऑन स्पेशल तविल बाय यस सुधाकर।
0: अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए वी आर नटराजू और उनके साथी अब प्रस्तुत कर रहे हैं सामगान प्रियकरम। यह गुरु सूरजानंद की रचना है जो राग कीरवाणी और मिश्र चापुताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग द परफॉर्मेंस वी आर नटराजू एंड पार्टी नाउ प्रेजेंट्स

0: वी आर नटराजू और उनके साथ ही अपने वादन का समापन लोकप्रिय कन्नड़ भक्ति रचना गोविंदा निन्ना से कर रहे हैं। इस रचना के रचयिता महान संत कवि पुरंदर दास हैं। यह राग जन सम्मोदिनी और आदि ताल में निबद्ध है।
1: वी आर नटराजू एंड पार्टी कंक्लूड देयर रिसाइटल विद द पॉपुलर कन्नड़ा डिवोशनल कॉम्पोजिशन गोविंदा निन्ना कंपोज्ड बाय ग्रेट सेंट पोएट पुरंदरदास सेट इन राग जन सम्मोधिनी एंड आदिताला।

0: ವಿ ಆರ್ ನಟರಾಜು ಆಂಡ್ ಪಾಟಿ.
1: ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಮಾಚಾರ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೈ ಪೂನಮ್ ಆಹುಜಾ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है. विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है. इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है.
1: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी. वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी. राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे. 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन. 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा. वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी. दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है. उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे. लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं. ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है.
1: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया. ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था. यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है. यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था. मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स IICA ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई. जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया.

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपने सुना वीआर नटराजू और उनके साथियों का नादस्वरम वादन। आपके साथ विशेष तविल पर संगत कर रहे थे एस सुधाकर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु का योगदान था, जिसे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: इंदि रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। यू आर लिसनिंग टू नादस्वरम रिसाइटल बाई